यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर भी शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल। गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मिला। दोस्तों, सुबह का समय है और आज आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर हाजिर होंगे हम थोड़ी देर में। कीजिए थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 34 डिग्री के साथ साथ आप आनंद लेंगे हेलो फरमाइश कार्यक्रम का।
1: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस
4: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस।

0: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी।
4: कुछ नहीं, चलती बैठी थी, आपका इंतजार कर रही हूँ मैडम।
5: जब से फोन कर दे आप नहीं रहे।
4: तो मैम क्या करे, बिजी चल रहा है, कॉल आ रही ना, आज संडे है ना।
6: दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
4: हेलो,
5: हाँ
4: क्या नाम है मैम आपका?
7: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
8: हर बीट में है शहर का कमाल,
9: डीएस 89.6 शहर की धुन।
10: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
7: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
10: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: क्या करे, बिजी चल रहा है, कॉल आ रही ना, आज संडे है ना।
1: दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
0: हेलो।
2: हाँ।
0: क्या नाम है महू जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी।
0: गंगापुर सिटी। अब छुट्टी तो खत्म हो गई ना किट्टू जी? छुट्टी खत्म हो गई क्या?
2: स्कूल जाना है।
0: अच्छा, कल से स्कूल जाना है।
2: हाँ।
0: देखो कितनी सारी छुट्टियों में क्या करा था आपने, छुट्टियों में क्या करा था आपने, मौज मस्ती।
2: हाँ। डांस किया था।
0: अच्छा, कौन से गाने पे किया था डांस बताओ?
2: अभी तो
0: वन्नो नाचेगी। तो हमें तो आपने भेजा ही नहीं कभी ना, आए हमारे स्टूडियो में अभी तक, जो हम देखते आपकी
2: वीडियो भेज देंगे।
0: कब आओगे आप? अच्छा, वीडियो भेज दोगे?
2: हाँ।
0: तो कब भेजोगे?
2: अभी।
0: हाँ, तो अभी। खाने में क्या बनाया आज किट्टू जी?
2: पास्ता।
0: वो तो मेरी पसंद है। किट्टू?
2: हाँ।
0: वो तो मेरी पसंद है।
2: मैगी पसंद है।
0: मुझे पास्ता मैगी दोनों पसंद है। अब कब ले खाओगे बताओ आप? चलो गाना बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आप?
2: अभी तो बन्नो नाचेगी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: अभी मतलब अभी।
0: अभी जस्ट अभी चल रहा है ना? ओके मैम।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
5: नमस्ते।
6: नमस्कार जी, नमस्कार।
5: नाम क्या है आपका?
6: नाम तो बाबू खान है।
5: कहाँ से बात करूँ?
6: गंगापुर सिटी नखेरे की कोठी के पास।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
6: मुझे इश्क है तुझसे मेरी जान।
5: आपकी फरमाइश करिए गाना।

0: हेलो
1: हेलो।
0: सर, नाम क्या है आपका?
1: दीपक मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गाना पूछ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। ये गाना जीवन का।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज।
2: नाम क्या है आपका?
3: क्या
2: नाम क्या है आपका?
3: मीशा।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: बड़ा इश्क इश्क तू करदा है।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परेगा

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का सुर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: याद है।
1: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS Science Academy, FCI Godown, Road Gangapur City, Near Sainik Nagar and Nasiya Colony. संपर्क करें 800-55983।

0: मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम सत्तू है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: दूध की डेयरी।
1: कौन
0: सा? गीत तेरी माया का न पाया कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने।
1: ओके, सुना रही हूँ आपको फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अनुष्का।
0: कहाँ से बात कर
1: रही? संजय कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: लुड़ लुड़ जावे मेरा हड़वा चली।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: थैंक यू।
1: हेलो,
2: गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
2: जी मेरा नाम सोहेल सैफी है मैडम।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
2: राजेशपुर में, गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: मैडम आज गाना सुनना चाहते हैं, दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरा दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।
2: थैंक यू मैडम।
1: यू वेलकम सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम पायल जा रहा है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो मैम?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: जिन्हें तार दे फिर सीआर वो नखरियाने ठावे से मेरे।
1: कौन सा?
0: जिन्हें तार दे फिर सीआर वो नखरियाने ठावे से मेरे।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी।
0: मैम जल्दी लगाना।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: पीयूष।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: लंबी लंबी चोरी मेरे दिल में।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमा।

0: जय इस छोरे गल्ला सेटिंग हो जा।
1: जी साजा, छोरा तो घना एंडी है।
2: न्यू बता, सेटिंग कितनी क्लियर है?
3: सेटिंग का तो बेरा ना, पर यार इतने हैं तेरा काकता वालिया ने भी ब्याले जाएंगे।
4: 89.6 पे रेडियो डीएस
5: सुनते रहिए, दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
6: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन,
7: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
8: 89.6 पे रेडियो डीएस,
7: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
5: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
7: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे?
1: नदुगप्पी जी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: मैं छोरा था सीधा साधा तेरे स्कूल में हो गया आता।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना।

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: आमीन साहब पिलोदिया वार्ड नंबर 8।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: हम गाना सुनेंगे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: सुनते रहिए, दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
4: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर।

दोस्तों, वक्त हो चुका है 11 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो टीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो टीएस।

0: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
1: रफी खान, लोगो मस्जिद के पीछे से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: एक से निकल बच्चों खोए खोए लंगना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
1: बिल्कुल मैं।

0: भवानी सिंह मुर्जे।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: ग्राम सिंहपुरा। गाना है फिल्मी गाना है राजस्थानी सुनाते हो आप?
1: सर राजस्थानी फिल्मी दोनों चलते हैं।
0: तो वो गाना लगा दो, वो लगवाते मारा बालाजी गवर्नमेंट की ड्यूटी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: हेलो।
4: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: टीना।
4: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: करौली फाटक, गंगापुर सिटी।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: रुई ना जो याद मेरी आई में।
4: ओके मैम, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।
3: ठीक।
5: की रह गया सी, एहे बस जो तमाशा करन आ गया।

0: नमस्ते।
1: सर नमस्ते, क्या है आपका?
0: ठंडेराम गुज्जर बोल रहा हूँ, गांव में दिलचा से।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: प्रताप रात का गाना है सर, तुम तो ठहरे पर्दे भी साथ क्या निभाओगे।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश।

0: गुड मॉर्निंग मैडम जी।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: जम्मू से गणेश केशव शर्मा जी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: आज मुझे सुना था मौसम फिल्म का गाना, शेड़ी रे शेड़ी कैसी गले में पड़ी।
1: ओके सर,
0: तो साथ में साथ में मैडम श्री मेरी सुषमा रानी बच्ची हैं, शिव शर्मा साथ शर्मा भाई साथ शर्मा दोस्त हैं, यूपी से विजय पांडे जी, राजस्थान से पूर्णिमा में जी, और हिमाचल से हैं गोल्डी भैया।
1: ओके सर, सुना रहे सबकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके मैडम, थैंक यू,
1: वेलकम। हेलो।

0: नाम क्या है आपका?
1: फैयाज खान पुराने इंडिया में।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मुझे जीने का शौक नहीं, चाहूंगा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: सर नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: योगेश जांगड़े बेनेतरा छत्तीसगढ़।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म दीवाना से कोई भी गीत।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे
1: हो?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: महिला मित्र।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: हेलो
3: हेलो,

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: ज्योति राजपूत।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: करौली फाटक गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: आंधी बन के आया हूँ।
1: ओके मैम, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू।
1: यू वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो सर? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा सर?
0: दरअसल
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश करिए।

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: खुशी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मिर्नापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फॉर्च्यूनर।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करें।
2: राजमावर और अपने गुलशन म्यूजिक।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: साक्षी।
0: कहाँ से बात करूँ?
1: दिल्ली।
0: कहाँ से बात करूँ मैम?
1: दिल्ली से।
0: कौन सा नाम सुनना चाहोगे?
1: बैरनी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम अय्यूब सलमानी मैम।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: चूली के रंगापुर सिटी से मैम।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: आज गाना सुनना चाहते हैं अदनान सामी का गाना है, तेरा चेहरा जब नजर आवे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो,
2: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: सुनते रहिए, दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
5: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे

0: हेलो
1: हेलो जी, आकाशवाणी रेडियो अपना जी गंगापुर जी राजस्थान जी।
0: हाँ जी सर, सत श्री अकाल।
1: पलक बेटा, सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल बेटा। होर भाई घर विच खैर सुखा साडी सेहत भाई?
0: सर ठीक है, और आप कैसे भूल गए एकदम?
1: नहीं बेटा, कल मैं कॉल लगानी, कल मैं ऐसे नहीं लगाई, मैं आज मैं लाइव प्रोग्राम होगा ता लगाएंगे।
0: नहीं सर, आज सर कुछ काम से बाहर जा रहे हैं इसलिए लाइव नहीं।
1: अच्छा अच्छा जी, अच्छा बड़े सर आज बाहर जा रहे हैं जी, उन्होंने सत श्री अकाल बुला दो बेटा मेरी।
0: ओके सर, मैं बोल दूंगी उनको।
1: अच्छा बेटा, क्या आज भरो बेटा रिकॉर्डिंग नहीं होगी?
0: हाँ जी।
1: चंगा बेटा, कोई नहीं भाई, चलो बेटा छोटी सेहत ठीक ठाक है? गर्मी बहुत पड़ रही है पंजाब में बेटा।
0: हाँ सर, सेहत तो ठीक है पर गर्मी तेज है, अभी बारिश का कोई पता नहीं है आने का भी।
1: बेटा कहते पंजाब भी पऊगी बारिश 28-27 तरीक, हूं पता नहीं की गल होगी, है ना।
0: हाँ सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: बेटा पहले तो मैं एक आपको खुशखबरी बताऊं।
0: हाँ जी सर बताइए।
1: बेटा मेरे ना मानजोग स्वामी जी ना, धर्मपाल स्वामी जी।
0: हाँ जी।
1: ते उन्हां दा बेटा जी विकास शर्मा, ते एक मेरी बहन है जी संतोष चीमा जी, वो रहती है जी अपने कनेडा में रहती है जी।
0: हाँ जी।
1: हाँ जी, ते ओदे अपने भैन चीमा साहब दे दोते दा जन्मदिन कल बेटा, ते उधरों जी शर्मा साहब दे बेटे दा जन्मदिन सी विकास शर्मा दे, उन्हां दी खुशी दे विच जी पहला तो थोनू मैं उन्हां दी लख लख वधाइयां दिंदा जी, उन्हां दी जन्मदिन दीआं बेटा।
0: हाँ जी सर, रेडियो डीएस साइंस एकेडमी की तरफ से आपके बच्चों को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद बेटा, जिउंदे रहो बहादुर रहो भाई, बाबा नानक सिंह चढ़दी कला चक्के भाई।
0: हाँ जी सर।
1: बेटा बेटा उन्होंने जन्मदिन की खुशी दे विच फिर वो की सुना दो बेटा, बोल कौन गुना कर बताऊं बेटा?
0: हाँ जी।
1: हम तो अगर बच्चे होते, हम तो अगर बच्चे होते, नाम हमारा तो पपलू डपलू खाने को मिलते डड्डू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये गीत सुना दो बेटा।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश परेगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है बेटा, सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल बेटा।
0: सत श्री अकाल सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
0: सुनील।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: तेरी लत लग जाएगी।

0: हेलो,
1: नाम क्या है आपका?
0: आर्यन मेरा।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मासूम शर्मा का चला दो, लोफर वाला।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: विजय।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: बूचड़ाई से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: माताजी का गाना कोई सा।
1: माताजी का गाना कोई सा भी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: रतनलाल बोल रहा हूँ, मऊ कला से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: अब है ना, आज तो ये रोम रोम पर बसने वाले राम जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एन नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।

0: डड्डू हैप्पी बर्थडे
1: ये गाना रे
0: बेटा सत श्री अकाल में बेटा सत बेटा सत श्री अकाल में
2: हेलो
1: हाँ जी नाम क्या है आपका
2: शिवम नैर
1: कहाँ से बात कर रहे हो
2: गंगापुर सिटी
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे
2: आरमगुंडा गर्दी का
1: कौन सा सर
2: आरमगुंडा गर्दी का
1: ओके

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हाय मेरा दिल, यो यो हनी सिंह का।
1: ओके मैम, सुना रही हूँ आपकी फरमाइश करिएगा।
0: ठीक।
1: हेलो।

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:07 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो DS पर।

0: आप जिस व्यक्ति से
1: गाना चलाना है
2: बात कर रहे हो?
1: नशे कॉलोनी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: जहोल। मैम गाने का नाम ही जहोल है।
2: जोल। जोल।
1: हाँ
2: ये बोलो। हाँ। जोल। वो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: दोस्तों अभी आपने सुना हल्लू फरमाइश कार्यक्रम दीपा जोशी के साथ। दोस्तों थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद और फेवरेट नए तरह में।

दोस्तों दोपहर का एक बज चुका है, लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में आपका मन पसंद कार्यक्रम नए तराने। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के साथ मैं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि।

0: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
1: डियर साइंस एकेडमी, जहाँ पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।
2: चलते हैं दोस्तों और करते हैं आगाज आज के इस कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको एक खूबसूरत ट्रैक के साथ, और इसके बाद में सुनेंगे चटपटी बातें।

दोस्तों नए तराने कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे फ्रॉडिंग के बारे में। दोस्तों आजकल सवाई माधोपुर जिले में साइबर पुलिस लगातार दबिश देकर और साइबर ठगों को सर्च कर रही है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। इसलिए हमें हमारे परिवारजनों को हमारे समस्त लोगों को ये सूचित करना चाहिए और जागरूक बनाए रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी लालच में ना आए। हम किसी को हमारे मोबाइल के OTP या बैंक संबंधित दस्तावेज या गोपनीय जो पिन कोड है वो कभी किसी को भी ना बताएं। दोस्तों हमारे कॉल पर या हमारे फोन पर किसी भी तरह के कॉल आ सकते हैं। हम हमारे रिश्तेदारों की आवाज़ बिल्कुल AI से निकाल कर ऐसा लगेगा आपको कि बिल्कुल हमारा रिश्तेदार जो हमसे बात करना चाहता है उसी का कॉल है। इनकी बात करने की तकनीक बहुत ही सुलभ और सरल होती है। दोस्तों इतनी आकर्षक भाषा होती है कि हम चंद मिनटों में कुछ समझ नहीं पाते और उससे पहले वो हमसे ठगी कर लेते हैं। बाद में मैसेज आने पर पता लगता है कि हमें ठगी के शिकार हो चुके हैं। दोस्तों साथ साथ हम एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें, कभी भी हम हमारे WhatsApp ग्रुप या बहुत सारे बड़े ग्रुप जिनमें होते हैं तो उनमें एक एप्लीकेशन आती है APK के नाम से, तो उसको कभी भी टच ना करें। उसको इंस्टॉल करने की कोशिश मोबाइल से कभी भी ना करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक साइबर का बड़ा जाल होता है। इसमें एक ऐसा वायरस होता है जो हमारे मोबाइल को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और वो डिवाइस को वो घर बैठे चलाकर और हमारे मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उनको भी मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज भेजने के साथ साथ दोस्तों वो हमारे मोबाइल की जो भी गोपनीय चीज़ें होती है, फोटोज़, बैंक डिटेल्स, जो भी आपके मोबाइल में रखी हुई सिक्योर चीज़ें हैं उनको ध्यान से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और वो हमारा खाता खाली भी कर सकते हैं और या अन्य भी आवश्यक जो दस्तावेज है उनका मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए हमें बचे रहना चाहिए। लौट कर आते हैं इस गाने के बाद।

0: legends and we out.
1: सुर में गाना
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: यहाँ हर बीच।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

0: मुकेश, ये अभी 50 साल का है, और ये बड़ा बेटा अरुण, ये हमेशा 21 का ही रहेगा।
1: Radio DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव, एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
1: Radio DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: एमबीबीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: तो वक्त हो चुका है 2:00। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले सुने थे नहीं तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे घर एक रंभूली विसरी। 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों सुनते हैं पहले गाने के साथ, गाने के बोल है भूली विसरी एक कहानी। मूवी का नाम है नागिन, डायरेक्टर है ऋषि कपूर, सिंगर है आराधना पायल और म्यूजिक डायरेक्टर है लता लक्ष्मीकांत।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डी

0: साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
1: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक, एक विद्यार्थी 98% से अधिक, 7 विद्यार्थी 97% से अधिक, 28 विद्यार्थी 96% से अधिक, 53 विद्यार्थी 95% से अधिक, 76 विद्यार्थी 90% से अधिक, 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
2: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
3: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: साथ है।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा।
4: दोस्तों, वक्त हो चुका है 3:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू वे गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:44 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनिए, इन्हें जानते हैं फादर पीटर दयाल।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: याद है।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है, 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का, थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों 4:02 का समय हो चुका है। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
4: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है पिपलाई गांव से। हमें कॉल किया है लक्षिता जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: बाबू खाना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: आज तुझसे कहना है वो कहने दे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: कश्ती।
0: कौन सा?
1: कश्ती।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:49 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से हमें कॉल किया है मगन मीणा जी ने, सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: प्यार है, नमस्कार
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: दिल्ली में आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो का मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं? काफी गर्मी हो रही है?
1: नहीं सर, गर्मी नहीं हो रही है, आज तो बरसात हो रही है बहुत तेज।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे यहाँ तो गर्मी की बरसात हो रही है, इतनी तेज।
1: सुबह तो इतनी तेज धूप थी, बहुत तेज, अब थोड़ी अचानक ही 3 बजे एकदम बारिश बहुत भयंकर आ रही है अभी तक।
0: अरे वाह वाह भाई, बहुत अच्छा।
1: ये ठंडा मौसम हो गया
0: लेकिन मथुरा में बहुत गर्म है। 42 डिग्री तापमान जा रहा है
1: सर, 40 चल रहा है यहाँ पर तो, परंतु क्या मौसम ठंडा हो गया बारिश से।
0: चलिए मौसम ठंडे का आनंद लीजिए। और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है नीलकमल।
1: हाँ जी।
0: मोहम्मद रफी साहब ने गीत को गाया है, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश, करिए गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, हृदय धन्यवाद आपका दिन मंगल।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा? ओके मैम सुना रही हूँ, फिर करवाई कर दोबारा।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोनिका।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी।
1: दीदी रिकॉर्डिंग में।

0: है।
1: ओके सर सुना,
2: ओके मैम सुना रहे हैं आपकी
3: रिकॉर्डिंग।
0: अरे नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: संजय राम गुजर बोल रहा हूँ, राम भद्रता से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
0: गाना ढूंगा जो दर्द मिला अपनों से, मिला शिकायत किससे करे।
1: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।

0: क्या है आपका?
1: मुसेफकाल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मुसेफकाल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मौलाना नगर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: यारी सॉन्ग।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: अरुण,
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मदद वाला मासन शर्मा।
1: ओके सर।
2: ऐसा कोई महबूब जमाने में नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद
3: दे रहे हैं मैडम, इसके बाद हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे।
4: सर सर सर गैंग वॉर, सर वो उसे मार देगा सर, जल्दी चलिए।